0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

গুড মর্নিং, নমস্কার, সত শ্রী অকাল, কেমন আছেন? হাই, দিস ইজ আরজে অঙ্কিত, আপ টিউন কর চুকে হ্যায় 107 এফএম রেইনবো পর, অর মে হাজির হুঁ কার্যক্রম লেকে ননস্টপ গপশপ। জি হ্যাঁ দোস্তো, নন স্টপ গপশপ মে মে রহনে ওয়ালা হুঁ 11 বজে তক আপকে সাথ লেকর আয়া হুঁ ধমাকেদার ট্র্যাকস, অর লেকিন ট্র্যাকস কে সাথ সাথ হাম করতে হ্যায় এক দূসরে সে ঢের সারি বাতেন। जी हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियो में एक रखा हुआ है फोन, जहां पर आप करते हैं फोन और हम एक दूसरे से करते हैं काफी सारी बातें। तो दोस्तों, जैसा कि मॉनसून पूरे इंडिया में दस्तक दे चुका है और कहीं कहीं देने भी वाला है, और हल्की फुल्की बारिश तो हर जगह ही शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आज मैं बारिश पर तो करूंगा नहीं बात, लेकिन बारिश से रिलेटेड ही करूंगा। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी जगह है जो आपके जहन में हो, जो आपको याद में हो, या फिर आप कभी गए भी हो, जो मानसून के समय, जो बारिश के समय वो दिखने में काफी सुंदर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जगहों के बारे में आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, जो मानसून के समय, जो बारिश के समय, जो पानी के समय काफी सुंदर, मनमोहक दिखने में लगती है। और आप अपनी बातें करने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए और हमसे अपनी व्यूज शेयर करने के लिए हमारे फोन नंबर पे आ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है

221-3-1-3-4-1 नंबर एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे, अपने मोबाइल में 221-3-1-3-4-1। और दोस्तों आज मैं भी आपको कुछ जानकारी दूंगा कि कौन सी जगह बहुत सुंदर लगती है मानसून के समय और मानसून में जन्नत बन जाती है, वो जगह है मांडू। जी हाँ, मांडू के बारे में आज मैं आपको दूंगा जानकारी कि मानसून के समय में वहाँ क्या क्या खास होता है।

0: फिल्म कॉकटेल 2 से दोस्तों महमूद राघव चैतन्य और रुआ के की आवाज में सुन रहे थे ट्रैक कंपोजिशन प्रीतम चक्रवर्ती की, लिरिसिस्ट अमिताभ भट्टाचार्य। और बात हो रही थी मॉनसून की, बात हो रही थी घूमने के बारे में, और घूमने के साथ अगर हमारे दोस्त फोन लाइन में ना आए तो कैसा हो सकता है। आइए बात करते हैं हमारे पहले दोस्त से। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्ते, कौन है आज हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: मैं शोभिक शौकर बोल रहा हूँ दादा, कस्बा से।
0: हाँ शोभिक, वेलकम, बताओ क्या कहना चाहते हो आज के बारे में।
1: पहली तो आप इतना घूमने की बात कर दिया, घूमने के लिए देखिए मौसम में ना हम लोग एक्सपीरियंस किया था कुछ दिन पहले, वो नॉर्थ बंगाल में तो बारिश ऑलरेडी आ गया था उस टाइम।
0: अच्छा,
1: नॉर्थ बंगाल में वो कालिम्पोंग पालिमपोंग में गया था उस टाइम, लावा लोलेगा वहाँ पर।
0: हाँ?
1: वहाँ पर बारिश में ना एक अलग ही एक पिक्चर होता है।
0: अच्छा,
1: वो जो वहाँ पर जो चा बागान जो होता है, जो पाइन पॉन जो होता है, वो बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि जब बारिश जो दूर से आप देख रहे हैं, आप कॉलेज में जब होता है बा होम स्टे में जब रहता है ना, जब आप बैल्कोनी में रहता है, एक कप कॉफी लेकर जब देखता है जो बारिश दूर से आ रहा है, वो सीन बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आपको जो मेघ जो होता है, क्लाउड जो होता है, वो जब जब जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। आपको झरना जो होता है, जो होता है, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो झरना जो हम लोग जो गर्म काल में जो वो धीमे धीमे पड़ता है, वो बारिश में इतना जोर पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। नदी जो होता है ना, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम में, क्योंकि हम लोग जब एनजीपी

0: से जब हम लोग जब कालिम्पोंग में जा रहा था उसके साइड में तीस्ता नदी, तीस्ता नदी जब देखता था स्रोत जो था ना बहुत जोर से था। ड्राइवर साहब बोल रहा था इस टाइम में बहुत एक ये स्रोत रहता है कि बारिश के टाइम होता है क्योंकि पहाड़ में बारिश हो रहा है तो जो जल तीस्ता में आ रहा है इससे स्रोत दीर्घ हो जाता है,
1: जल का स्तर और बढ़ जाता है वहाँ पे
0: एकदम ज्यादा। और ये जो रास्ता एकदम साफ सफाई तो रहता है पहाड़ में तो साफ सफाई रहता है
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ जो होता है अच्छा से जो फूल खिलते हैं जो गाछ पाला एकदम सबूज बहुत अच्छा लगता है इस टाइम में जो नॉर्थ बंगाल में एक अच्छा सा प्राकृतिक जो होता है शोभा देता है दादा,
1: मतलब मानसून के समय वो ज्यादा और खिल जाता है वो
0: एकदम दादा मौसम के समय में इस टाइम में बहुत अच्छा सा लगता है।
1: बिल्कुल सिर्फ विंटर इस और समर ही घूमने की जगह नहीं है, मानसून में भी हम कहीं जा सकते हैं
0: एकदम दादा।
1: थैंक यू शोभिक आने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे। और दोस्तों भारत का दिल कहने वाला मध्य प्रदेश अपनी खूबसूरती की वजह से टूरिज्म को बेहतरीन स्पॉट है। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह हैं लेकिन मांडू की बराबरी कोई नहीं करता। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शानदार वास्तुकला के कारण मांडू यूनेस्को के टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में भी शामिल है। मध्य प्रदेश के धार जिले की स्थित मांडू या मांडव इंदौर में लगभग 100 किलोमीटर दूर है। आज भले ही दूर से एक छोटा सा शहर नजर आता है लेकिन एक समय था जब ये दुनिया के सबसे समृद्ध और बड़े शहरों में से एक था। ये शहर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर बसा है जिसे एक गहरी खाई मालवा पठार से अलग करती है। अपनी इसी प्राकृतिक बनावट के कारण ये सालों तक राजाओं महाराजाओं का पसंदीदा गढ़ रहा है। इन्हीं राजाओं के शासनकाल में मांडू में एक ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई जो आज दुनिया भर में अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर है। अगर आप प्राकृतिक खूबसूरती और मांडू की शांति में खो जाना चाहते हैं तो आज का ये कार्यक्रम दोस्तों सिर्फ आपके लिए ही है।

फिल्म पति पत्नी और वो दो से फहीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी और जारा एस खान की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक। तनिष बख्शी, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी का था संगीत। लिरिसिस्ट फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी के। 10:15 AM हो चुका है दोस्तों, और जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया 107 FM ट्यून किया, उन्हें बता दूं कि आरजे अंकित आपके साथ। और आज मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि मानसून के समय, बारिश के समय ऐसी कौन सी जगह है जहां घूमने जाना चाहिए और वो उसको देखने में काफ़ी सुंदर लगता है उस समय, मानसून के समय उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है और उस जगह की जो सुंदरता है, उस जगह की जो खूबसूरती है, वो मानसून के समय और उभरती है और निखरती है। तो ऐसी कोई जगह आपके जहन में हो, आपके सोच में हो, या आप कभी गए हो बारिश के समय, तो आइए हमसे शेयर करिए। हमारा फ़ोन नंबर है 2213-1341।

दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बारिश के समय मांडू क्यों जाना चाहिए। वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और वहाँ की जो सुंदरता है, कैसे मानसून के समय उभरती है, उस बारे में आपको दे रहा हूँ जानकारी आज के इस कार्यक्रम में। बात करते हैं हिंडोला महल के बारे में। हिंडोला महल का मतलब होता है झूला, और इस महल का ये नाम इसकी बनावट के कारण मिला है। इस महल की दीवारें थोड़ी टेढ़ी है, जिसके कारण ये इमारत झूले जैसी नजर आती है। ये राजा का शाही दरबार हुआ करता था और मांडू के शाही महल परिसर की इमारतों का एक हिस्सा है।

फिल्म पीके से दोस्तों आप सुन रहे थे शान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत शांतनु मोहित्रा का संगीत स्वनंद किरकिरे के बोल। आइए दोस्तों बात करते हैं जो अगला घूमने का स्पॉट है मांडू में वो है हुशांग शाह का मकबरा। सफेद संगमरवर से बनी इमारत का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले ताजमहल आता है, लेकिन उससे भी पहले

मांडू का होशांग शाह का मकबरा सफेद संगमरमर से बनाया गया था। माना जाता है कि यह भारत की पहली सफेद संगमरमर से बनी इमारत है और मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनवाने से पहले अपने वास्तुकार उस्ताद हामिद को इस मकबरे का मुआयना करने भेजा था।

हैप्पी न्यू ईयर से दोस्तों, आप सुन रहे थे कनिका कपूर, रविंद्र उपाध्याय, मीराई वर्मा और फतेह की आवाज में ये ट्रैक है। डॉक्टर ज्यूश और विशाल शेखर का कम्बिशन, जीवन मान और कुमार के बोल। बात करते हैं वहां के जामा मस्जिद के बारे में। दोस्तों, ये मांडू की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। ये इस मस्जिद का निर्माण होशंग शाह के शासन काल में शुरू हुआ था, लेकिन मोहम्मद खिलजी के शासक में उसका विस्तार हुआ। ये मस्जिद 4.6 मीटर ऊंचे चबूतरे पर बना है। इस पर 4 बड़े गुंबद और 160 छोटे गुंबद बने हैं, जो इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाते हैं। हालांकि अब सिर्फ 80 गुंबद ही बचे हैं। इस मस्जिद को इस तरह बनाया गया है कि बिना किसी माइक के भी हर कोने में आसानी से आवाज़ पहुंच सकती है।

और शेखर अफजियानी की आवाज में ट्रैक, विशाल शेखर का कंपोजिशन, अनविता दत्त और कुमार के बोल। 10:30 AM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ, शो चल रहा है नॉन स्टॉप गपशप आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर, और आप हमारा ये कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप पर भी रहूंगा 11 बजे तक आपके साथ। और दोस्तों आज मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं और पूछ भी रहा हूं कि हम तो हमेशा विंटर और समर में घूमने जाते हैं, लेकिन मॉनसून में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम घूमने जा सकते हैं, यानी बारिश में कौन सी जगह पर हम जा सकते हैं जहां की जो सुंदरता है वो बारिश के समय और निखर के आती और उभर के आती है। अगर आप ऐसी कोई जगह जानते हैं या फिर आप कभी गए हो बारिश के समय उस जगहों पर, तो आइए हमसे शेयर करिए। हमारा फोन नंबर है 2221341। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बारिश के समय मध्य प्रदेश में एक जगह है मांडू, वहां पे क्यों जाना चाहिए, उसकी खूबसूरती के बारे में दोस्तों आज मैं पूरे कार्यक्रम में आपसे साझा कर रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं। अब बात करें दोस्तों बाज बहादुर महल के बारे में। मालवा के सुल्तान मल्लिक बेजदी, जिन्हें बाज बहादुर के नाम से जाना जाता है, बेहद उम्दा गायक और तलवारबाज थे। कहा जाता है कि जब वे राग दीपक गाते थे तो खुद ब खुद दिए जल जाते थे। गोंडवा की रानी दुर्गावती से युद्ध में मात खाने के बाद वे मांडू में बस गए और अपना जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। अपनी रानी रूपमती के साथ वे यहीं संगीत का रियाज किया करते थे।

0: फिल्म गुंडे से दोस्तों आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में रोमांटिक ट्रैक्स। सुहाली सेन का कंपोजिशन इरशाद कामिल के बोल, और हमारे साथ एक फ्रेंड आ चुके हैं लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: हाँ मैं अरूप बोल रहा हूँ।
0: हाँ अरूप जी, वेलकम टू माय शो, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज।
1: हावड़ा से, हावड़ा से।
0: बोलिए।
1: अच्छा, हम 91 में माने हम कुछ काम के लिए पंजाब गया था।
0: अच्छा,
1: तो माने वापस आने के लिए हम कालका स्टेशन में खड़ा हुआ था करीब करीब 5 से 6 बजे तक।
0: अच्छा, शाम के
1: धूप भी निकल गया और भी बारिश भी होता है, वो अपूर्व माने मनोरम दृश्य है।
0: तो आपके शाम को खड़े थे 5 से 6 बजे। हेलो,
1: और एक बात
0: बोलिए।
1: चलता है वो जो चेरापुंजी है ना मेघालय का, उसमें धूप भी निकलता है और बारिश भी होता है।
0: हाँ वो तो है, चेरापुंजी इसलिए फेमस है।
1: और एक आपके साथ गुजर करूंगा, ओल्ड एज हो गया। बारिश का गाना है वो जो गुमनाम है ना
0: जी,
1: गुमनाम फिल्म का गाना है ना, अम्मा जब ये साधक है वो भी गाना बजा दीजिए
0: जी। जरूर जरूर, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपकी रिक्वेस्ट रखने के लिए। थैंक यू अरूप जी आने के लिए और अपनी बातें शेयर करने के लिए हमसे। हाय दोस्तों, अब मांडू में एक और जगह, वो है रूपमती मंडप। बाज बहादुर महल के पास स्थित है रानी रूपमती मंडप। रानी यहां से नर्मदा नदी के दर्शन किया करती थी। बाज बहादुर राग दीपक के उस्ताद थे और रानी रूपमती राग मल्हार की। संगीत के साथ साथ नर्मदा नदी में भी उनकी खूब आस्था थी। यहां से आप नर्मदा नदी के दीदार कर सकते हैं, जो बारिश के मौसम में और ज्यादा बढ़ जाती है।

0: रेखा भारद्वाज और दोची रायना की आवाज में तो सब सुन रहे थे, प्रीतम की आवाज में, प्रीतम के कंपोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के थे बोल। और बारिश में घूमने की बात करने के लिए हमारे साथ एक और फ्रेंड आ चुके लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग सुप्रभात अंकित।
0: गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज?
1: बोल रहे बाली हावड़ा
0: जी। किशोर जी, वेलकम टू माय शो।
1: बहुत दिन बाद आपको।
0: जी हाँ जी हाँ
1: अंकित, ऐसे जो होता है बारिश में तो हम लोग ऐसे भीग रहे हैं, ये तो अलावा आनंद होता है, मजा होता है।
0: हाँ हाँ।
1: तभी हर साल हम पहले गया, अभी यार होता नहीं, बहुत दिन गैप हो गया। हाँ, अगला साल भी गया।
0: अच्छा,
1: दीघा भी गया। वहाँ पर जो समुन्द्र के पानी,
0: हाँ?
1: आगे ऊपर से पानी पड़ता है ना, बहुत अच्छा ही लगता है, जेऊ आता है।
0: हाँ?
1: और मेघ वहाँ पर जैसे लग रहा है बहुत सामने है। और जिसको बारिश के जो पानी आता है ना, जब भी स्नान कर रहे हैं,
0: हाँ?
1: जब भी माथा में पड़ता है, गांव में पड़ता है, मतलब लग रहा है ये जैसे अल्पिन घुसता है,
0: कांटा की तरह लगता है।
1: ऐसे तो हम लोग बहुत देखा, एक जंगल में कोई दिन घुसा बारिश देखने के लिए, हम घुसा।
0: अच्छा, वाह।
1: मेरा जीजा जी फॉरेस्ट में काम करता है वहाँ पर, जंगल मेरा
0: था,
1: तो हमको घुमाने लेके गया। वो टाइम पर बारिश आया।
0: अच्छा,
1: एकदम जंगल में इतना पाता में आवाज हो रहा ना, जंगल इतना सुंदर लग रहा है, दृश्य हम कोई दिन भूलेगा नहीं। वहाँ पर जहाँ पर गया उसको नाम है पीरी बुरु मेघाता बुरु, वहाँ पर ना कोई देखा नहीं, सब आदिवासी आदमी है, ज्यादा आदिवासी।
0: अच्छा,
1: वहाँ पर वो लोग जैसे टाटा से ट्रेन पकड़ के एकदम जंगल में, वहां से लग जाए 8 घंटा 9 घंटा लग जाते
0: हैं, काफी दूर है।
1: हाँ, बहुत दूर है। और वो लोग देखते हैं कैसे ट्रेन जाता है, मॉल के पेखम लगाता है टूल में, और ट्रेन चलता है, वो लोग नाम देते हैं गाड़ी से।
0: अच्छा,
1: कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कैसे नाम
0: प्लेटफॉर्म
1: माटी है, ऊपर चला जाता है। उन लोग के देखा, हम तो उन लोग वहाँ पर था, जीजा जी वहाँ पर था, कैसे रहता है इन लोग के साथ? बोले ये लोग तो सब आदिवासी है, जंगल में रहता है, ज्यादा उस पर मुख में चाहता है ना तो मार देता है। वो लोग सोचता है कुछ हमको कुछ कर रहे हैं, चाहता है कुछ, बोले उन लोग को देखने होगा ना, ऐसे करके देखने होगा। उन लोग के मतलब जाने दीजिए। जंगल में देखा, और ऐसे गाड़ी लेके घूमने के बाद हम वहाँ पर हाथी देखा।
0: अच्छा,
1: जंगली हाथी। लोग बोलते हैं ये लोग आम के लिए आया है, आम खाने के लिए, पजलियाम पजलियाम होता है ना जंगल में। अरे देखा वहाँ पर, रात में गया तो एक बार देखा, हमें वहाँ पर बहुत घुमा, 2-4 बार घुमा।
0: सब बारिश के समय की बात है?
1: ना बारिश के समय नहीं घुमा। तो और एक बार देखा, ये रात में लोग

0: आदिवासी होता है ना वहाँ पर साल बागान है, सेगुन साल का बागान, माने गाछ बहुत ज्यादा। तब हम लोग रात में ना बाघ आक्रमण कर रहे इसीलिए ना वो बहुत दूर से आग लगा के सोता है बीच में, जैसे कोई हाथी बाघ उन लोग का आक्रमण ना कर सकते, इसलिए वो दृश्य अलग दृश्य है। जंगल में जब भी बारिश देखा वो भी अलग है। एक देखे जंगल में जब भी बारिश देखा बहुत दूर में दिखाया मेरा जिया जी एक भोईस के दिखाया, बुनो भोईस, वो भी भीग रहे चुपचाप खड़ा होकर देख रहे।
1: अच्छा। हमें
0: डर लग रहा है मार देगा ना क्या देखे
1: वो नहा रहे होंगे बारिश में,
0: बहुत सुंदर लगा। और भी सब कोई नहीं भूलेगा, अरे आवाज इतना आवाज हो रहा है पाता पर जल पर रहे
1: जी। ओके थैंक यू किशोर जी आने के लिए और बताने के लिए कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए थे बारिश समय और कौन सा दृश्य आपने देखा। और जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट दोबारा ऑन किया उन्हें बता दो कि दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि बारिश के समय मॉनसून के समय ऐसी कौन सी जगह है जो दिखने में और भी खूबसूरत हो जाती है, उसकी जो खूबसूरती वो निखर के आती है, वो उभर के आती है। और आप अपनी बातें बताने के लिए हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर 2213-1341। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि मानसून के समय मध्य प्रदेश में एक जगह है मांडू, वो कितना खूबसूरत हो जाता है। अब बात करते हैं मांडू में एक पॉइंट है, उसका नाम है इको पॉइंट। अगर आप दाई महल की ओर मुंह करके तेज आवाज में कुछ बोलेंगे तो आपको अपनी आवाज गूंजती हुई सुनाई देगी। इस तरह बनाया गया है कि यहां से आवाज गूंजकर 35 किलोमीटर दूर पहुंच सकती है।

फिल्म रेस टू से दोस्तों बेनी देल और शलमली खोलगड़े लेकर आए थे ये ट्रैक प्रीतम का कंपोजिशन प्रशांत इंगोले के बोल। और हमारे साथ हमारे फोन लाइन में आ चुकी हैं आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर, आइए कर लेते हैं बात। और वो आखिरी कॉलर कभी फोन कर चुका है दोस्तों, कोई बात नहीं। और दोस्तों बात कर रहे थे मांडू के बारे में, तो मांडू घूमने के लिए बारिश का महीना सबसे बेहतरीन है। जुलाई से सितंबर के महीनों में यहाँ की खूबसूरती और बढ़ जाती है। विंध्याचल की पहाड़ियाँ हरियाली से घिर जाती है और मौसम इतना सुहाना हो जाता है कि घूमने का मजा जो है ना दोस्तों वो हो जाता है दोगुना। आइए जहाँ मजे की बात है ये ट्रैक ना हो तो कैसा चलेगा, ये सुन लेते हैं लास्ट ट्रैक।

0: फिल्म एक था टाइगर से दोस्तों वाजिद और श्रेया घोषाल लेकर आए थे ये ट्रैक साजिद वाजिद का संगीत और कौशल मुनार के बोल। और हमारे साथ एक दोस्त आ चुके लाइन पे करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो
0: हाँ नमस्ते, कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: नमस्कार, जहाँ जाता हूँ होती है हलचल, प्यार से लोग कहते हैं मुझे श्याम कुमार चंचल।
0: श्याम जी वेलकम टू माई शो, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज आप?
1: मैं कहना चाहता हूँ कि मैं वैष्णो देवी दर्शन के लिए गया हुआ था, तो वहाँ से जब हम रास्ते जाते हैं वहाँ पे काफी माने अन्न खिलाए अन्न लगाए वो वृक्ष एक एक है, उसमें एक फूल निकलते हैं
0: जी।
1: और हम देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, तरह तरह के विभिन्न रंगों के फूल हैं वहाँ
0: जी,
1: तो रास्ते में लगते हैं, तो उस पर वही मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल शेयर करिए।
1: बरसात का था मौसम, पुरकैफ थी फिजाएं, थम थम के बरसती थी रहमत की ये सदाएं, यानी बारिश, थम थम के बरसती थी रहमत की ये सदाएं, बागों के सब्ज पौधे सब लह लहा रहे थे, और चंचल के गले मिलकर मल्हार गा रहे थे।
0: वाह वाह वाह वाह वाह आशीष जी वाह, बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई है हमें आखिर में जाते जाते। और दोस्तों अब आप लोगों से भी वक्त हो गया है कि मैं आप लोगों से ले लूं इजाजत, और ये भी वादा है कि मिलूंगा बहुत जल्द आप लोगों से फिर मैं 107 FM रेनबो पर एक अलग टॉपिक लेकर इसी चैनल पर। तब तक लिए बाय, टेक केयर एंड अ वेरी हैप्पी वीकेंड दोस्तों। सुंदरी साथ रे 107 FM रेनबो।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: एक विशेष घोषणा। আগামী 2-3 ঘন্টার মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোনো কোনো জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বিদ্যুৎ, বজ্রবিদ্যুৎ এবং 30-40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। ঘোষণাটি শেষ হল।
4: কালজয়ী বাংলা গানের ধারা ছুঁয়ে যাক মন। শুনছেন গান দরিয়া 107 FM রেইনবোতে। গান দরিয়া, গান দরিয়া, ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে যাক মন।

0: सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के

0: हेलो हेलो हेलो दोस्तों, 107 एफएम रेनबो सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे रिंकू और आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम 3 का तड़का।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का। 3 का तड़का, 3 का तड़का, 107 एफएम रेनबो पर 3 का तड़का। 3 का तड़का, 3 का तड़का, 107 एफएम रेनबो पर। रेनबो पर, रेनबो पर।
0: जी हाँ दोस्तों, 107 एफएम रेनबो पर 3 का तड़का, ये शो ऐसा है कि बाहर का मौसम चाहे जैसा भी हो लेकिन हमारे स्टूडियो का जो तापमान है हमेशा हाई लेवल पर ही रहता है, क्योंकि इस शो में आपको मिलेगी 3 गुना मस्ती, 3 गुना एंटरटेनमेंट और 3 सारा और ढेर सारा तड़का, क्योंकि बॉस इस तड़के का स्वाद हमारी जनता के सर पर चढ़कर बोलता है। और क्योंकि आज दिन है सनी सनी सनी, तो चलिए 3 के तड़के में भी सनी सनी हो जाए। आइए सुनते हैं यो यो हनी सिंह और नेहा कक्कड़ की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, तो तीन का तड़के का स्वाद जो है आपकी सर चढ़ के तो बोल ही रहा होगा, क्योंकि सनी सनी और पानी पानी नीले रंग और योयो हनी सिंह साथ में नेहा कक्कड़, क्या तड़का था। वैसे 107 एफएम पर यही सब प्यार की बदौलत ही हमारी जो रेटिंग है वो धूम मचा रही है। नंबर वन का स्वैग है हमारा, और जानते ही हैं कि हमारी क्या बात है। वैसे बिना देरी किए हुए हम अगला गाना आपको फुल वॉल्यूम में सुनाएंगे। वैसे इसमें भी तीन का तड़का है, कैसे, क्योंकि गायकार है सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और साथ में है नीति मोहन, वो है चेन्नई एक्सप्रेस। आइए सुनते हैं इस तड़के को।

जी हाँ दोस्तों, आप चेन्नई एक्सप्रेस से सुन रहे थे तीन का तड़का का शो में सुनिधि चौहान और साथ में थी नीति मोहन और साथ में थे अरिजीत सिंह। इन तीनों गायकर ने जो तड़का मारा है, वैसे तो शो का हिट कराने में उनका ही नंबर वन है। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो की घड़ी में 3:15 हो चुके हैं और एक गीत सुनने के बाद हम चलेंगे सीधे परियोजना प्रस्तुति पे। आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत फिल्म धूम 3 से। वैसे गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। इस धूम 3 में कटरीना का डांस बेहद ही देखने लायक था, यानी कि 3 के तड़के के शो में तड़का ही था। लेकिन दोस्तों, अभी वक्त हो चुका है परियोजना प्रस्तुति का। आइए सुनते हैं परियोजना प्रस्तुति।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: जी हाँ दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति में आज हम विषय लाए हैं लखपति दीदी योजना। ये योजना प्रधानमंत्री द्वारा प्रारित किया गया है और 15 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह घोषणा किया गया है। इसका उद्देश्य देश के स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs से जुड़ी महिलाओं को वित्तीय और तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर उनकी वार्षिक आय को कम से कम 1 लाख प्रतिवर्ष तक पहुंचाना। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों की स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG से जुड़ी महिलाओं को ये लक्षित किया है। और इस योजना का नया लक्ष्य यह है कि शुरुआत में सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। और ताजा अपडेट यानी कि 2026 के ताजा अपडेट के अनुसार भारत सरकार ने 3 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए 3.7 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया है। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसका नया लक्ष्य बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया है। जी हां दोस्तों, महिलाओं को पारंपरिक और आधुनिक क्षेत्रों जैसे LED बल्ब बनाना, प्लम्बिंग करना, ड्रोन चलाना, नमो ड्रोन दीदी, कृषि और फूड प्रोसेसिंग का मुफ्त परीक्षण दिया जाता है। महिलाओं को अपने छोटे व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त या कम ब्याज पर सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसका नए नए ताजा अपडेट ये आई है कि बजट में महिलाओं के उत्पादों को बेचने के लिए शी मार्ट्स और डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर्स की शुरुआत की गई है, ताकि उन्हें अपने सामान के लिए सीधा बाजार मिल जाए। महिलाओं को डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन मार्केटिंग भी सिखाई जा रही है। इस लखपति दीदी के योजना के तहत पात्रता और आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है कि आवेदक महिला भारत की मूल निवासी होनी चाहिए और उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला का किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना अनिवार्य है। इसके लिए कोई अलग से सीधा ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। महिलाओं को अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या अपने स्वयं सहायता समूह के जरिए ही आवेदन करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अब केवल गृहिणी ही नहीं बल्कि सफल उद्यमी और बिजनेस वुमेन बन रही है। परिवार की आय बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य के स्तर में सुधार आ रहा है। ये योजना महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद का रोजगार पैदा करने की ताकत देती है। लखपति दीदी योजना वित्तीय सहायता से आगे बढ़कर महिलाओं को हुनर, बाजार और पहचान देने का एक क्रांतिकारी अभियान है। 6 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का ये संकल्प भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ी भूमिकाएं निभाएंगी। पहली स्लाइड योजना का नाम और

0: प्रधानमंत्री मोदी जी तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तस्वीर हमें प्रस्तुति के अनुसार लगाई जानी चाहिए। बजट 2026 में घोषित शीम आर्ट्स वाले पॉइंट को हमेशा इसी आधार पर जोड़ने के लिए हमारी लखपत दीदी प्रयास कर रही है।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।
0: जी हाँ दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका तीन का तड़का में। और अभी तीन का तड़का लगाते हैं विशाल डडलानी, नक्स अजीज और प्रीतम की आवाज में। सुनिए ये तड़का और रिंकू के साथ बने रहिए।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे विशाल डडलानी और नक्स अजीज और साथ में थे प्रीतम। आप सुन रहे थे इनके गीत फिल्म बजरंगी भाईजान से। लेकिन अभी सुनते हैं हमारा एक विशेष कार्यक्रम उमंग।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
1: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
1: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
1: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
1: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भू परपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहां से आया।
1: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि

0: क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं क्या वही सिलिका है?
1: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
0: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं। और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ?
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
7: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
7: हाँ बिटिया, वो तो पुरातन

0: तत्ववेत्ता है ना?
1: मामा जी।
2: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
3: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
2: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ, यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
3: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
2: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा, भोज वृक्ष।
2: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
3: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
2: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
3: अच्छा।
2: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
2: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
2: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
2: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
2: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
3: अच्छा।
2: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
3: एपिग्राफ।
2: शाबाश निधि।
3: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
2: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं, लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
3: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
2: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
2: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं, और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
2: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओ, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
2: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी।
2: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
2: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
5: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: Shabash. Shabash, Moti, shabash. आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं। इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ, देख रहा हूँ। पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस, वहीं खड़े रहो। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता।

0: सकता हूं। और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
1: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
0: अच्छा
2: वाह,
0: और
1: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
0: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
1: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
0: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
1: चल बेटा मोती।
0: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
3: एक बार दल प्रचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
4: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
5: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
4: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
5: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
3: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई।

0: लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
2: है?
1: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा?
1: हाँ,
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं अच्छा, किसी से नहीं कहेंगे?
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनु, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनु।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनु बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग। ये हमारा दिल्ली से विशेष कार्यक्रम था और ये तीन का तड़का में आप सुन रहे थे। इसी के साथ रिंकू को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
4: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का। 107 FM।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Hey, listen na, আমাকে খুব জলদি কিছু জিনিস পাঠাতে হবে, কোন সুপার ফাস্ট অপশন আছে নাকি?
4: আরে ভাই একদম, ইন্ডিয়া পোস্ট নিয়ে এসেছে 24 স্পিড পোস্ট, মানে পরের দিনই নিশ্চিত ডেলিভারি।
3: তাই নাকি? মানে দরকারি ডকুমেন্ট থেকে পার্সেল বা যে কোনো জরুরি জিনিস সবকিছু এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে?
4: আরে হ্যাঁ ভাই, রয়েছে রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং, পকেট ফ্রেন্ডলি রেট আর সবচেয়ে জরুরি ওটিপি ভিত্তিক নিরাপদ ডেলিভারি। শুধু ভরসা রাখো ইন্ডিয়া পোস্টের উপর।
5: বিশদে জানতে

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: सेल्यूलॉयड सुपर हिट्स। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। 107 FM रेनबो पर आपका फिर से स्वागत है। रिंकू आपका सेलुलॉइड सुपरहिट्स में स्वागत करती है। दोस्तों, फिल्मों की रीले या फिर छाया लोक, यानी कि सिनेमा बॉलीवुड की चकाचौंध से भरी हुई इस रेडियो की दुनिया में हम आपको लिए चलेंगे ऐसे ही बातों के साथ, प्रेम भरे गीतों के साथ। तो 7:03 हो चुके हैं और गीतों का ये सफर जारी है रिंकू के साथ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जुलाई 1 तारीख से हमारा एफएम रेनबो में जो छाया लोक है वो भाग 2 के साथ प्रस्तुत होगा, क्योंकि भाग 1 में 1 घंटा आप आरजे रिंकू के साथ रहेंगी और भाग 2 में आपके साथ होंगी आरजे पूनम। तो दोस्तों बने रहिए सेलोरोड में, सुपरहिट 2 का मजा आप लीजिए और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में मेरे साथ ये गाना अभी सुनिए।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे कविता कृष्ण मूर्ति को और हमारा शो चल रहा है छायालोक का। सेलुलॉइड सुपर हिट्स में आप ऐसे ही सुपर हिट्स गाने रिंकू के साथ भाग एक में सुनते रहेंगे और भाग दो में पूनम जी के साथ आप सुनेंगे, क्योंकि ये प्यार भरा सुपर हिट शो है।
1: सेलुलॉइड सुपर हिट्स।
0: जी हाँ दोस्तों, सेलुलॉइड सुपर हिट्स में अभी हम बात करेंगे उन प्यार भरे नगमों की, मोहब्बत की राह में जो जज्बात नए लिए फिरते हैं उन्हीं के बारे में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। बातों में, मुलाकातों में, चाय के रस के साथ उन यादों को भी हम खंगालेंगे जिसको आप अपने साथ मेरे साथ बांटना चाहते हैं, क्योंकि चाय का कप आपके हाथ में होगा और यादें आपके दिमाग में होगी और बातें मेरी सुन रहे होंगे। तो है ना, सुपर हिट्स सॉन्गों का मजा और तड़का दोनों एक साथ चलेगा। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

जी हाँ दोस्तों, जरा अपनी धड़कनों को थाम लीजिए क्योंकि ये मोहब्बत का मौसम है और थोड़ा सा आराम कीजिए। दोस्तों एफएम रेनबो में हम आपके लिए लाए हैं सेलिब्रेट सुपर हिट्स ऐसे कि बस मुस्कुराइए और दिल से हमारा नाम लीजिए। आप सुन रहे थे अभी कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, अभिजीत और सुदेश और साथ में थी पूर्णिमा, इनकी आवाज में ये गीत फिल्म इश्क से। वैसे तो गीत के बोल लिखे थे देव कोहली ने और संगीत से सजाया था अनु मलिक ने। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सेलुलाइट सुपरहिट शो है और हम आपको छायालोक में ऐसे ही बेहतरीन गाने सुनाने का वादा करते हैं, क्योंकि भाग एक में आप रिंकू के साथ है और मस्ती के साथ आपका नशा जो है ना वो बरकरार ही रहेगा, क्योंकि हवाओं में आज अलग ही नशा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार का रंग बिखरा हुआ है, और जब ये पहले प्यार का नशा हो तो क्या बात है। आइए सुनते हैं पहले प्यार की बातों को उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में।

दोस्तों, ऐसे ही उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में जब हम पहला नशा गीत को सुनते हैं तो शायद पहली सी वो सुरसुराहट, वो पुरानी यादें, वो ताजा हो जाती है। कभी तो किसी ने खूब ही लिखा है कि पुरानी यादों की किताब जब भी खुलती है तो हर पन्ने पर एक प्यारी सी धुन से मिलती है। नए जमाने के सुर भी सर झुकाते हैं वहां पर जहां हमारे उदित नारायण, साधना सरगम जी मिलते हैं। दोस्तों, 90s का वो दौर था और प्यार भरे नगमे थे। वैसे 107 FM रेनबो पे आप आरजे रिंकू को इस भाग में सुन रहे हैं और मैं वादा करती हूं कि आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं होने दूंगी। आनंद के साथ आपको एक घंटा मेरे नाम जरूर बिताऊंगी। चलिए सुनते हैं जुबीन, शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत।

वाह दोस्तों, क्या बात है। ये गाने को सुनकर तो सच में झूमने का मन कर रहा है। वैसे जुबीन और शंकर महादेवन के साथ जब सुरीधि चौहान की आवाज की मेल खाती है ना, तो क्या बात है दोस्तों। वैसे इस गाने ने तो सीधे दिल पर दस्तक दे दी है। वैसे प्यार का एहसास भी कितना अजीब होता है ना। इंसान चाहे कितना भी मशरूफ हो, जब किसी की याद आती है तो चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आपके आप ही आ जाती है। वैसे हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ऋतुओं के साथ जुबीन ही छाए हुए हैं। तो चलिए जुबीन की आवाज में एक और गीत सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, जब दिल दर्द से गुजरता है तो लफ्ज अपने आप ही खामोश हो जाते हैं, पर ये आंखें सब बयां कर देती है। तभी तो किसी टूटे हुए दिल ने क्या खूब लिखा है, कांच की तरह टूट कर बिखर गया है ये दिल मेरा, अब हर टुकड़े में सिर्फ अफसोस का ही बसेरा है। तुमने तो हंसकर कह दिया अलविदा हमें, पर इस दिल में अब सिर्फ तन्हाइयों का अंधेरा है। आप सुन रहे थे जुबीन की आवाज में, ये गीत फिल्म गैंगस्टर्स है। दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त हो चुके हैं 7:34 और मैं अभी भी आपके साथ यानी कि आरजे रिंकू आपके साथ रूबरू पेश हो रही हूँ सेलुलॉइड सुपरहिट्स में, और आप सुन रहे हैं मुझे, सुनिए इस गीत को भी।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुखविंदर सिंह की आवाज में ये प्यार भरा तड़कता भड़कता हुआ गीत सुन रहे थे 1947 अर्थ से। और ये हमारा शो जो है वैसा ही तड़कता भड़कता हुआ आपके सामने पेश हो रहा है, क्योंकि आपकी दोस्त भी कुछ ऐसे ही है। क्योंकि कड़क शर्ट करिश्मा कपूर के लटके झटके, सलमान खान का बिंदास अंदाज और साथ में अभिजीत की आवाज, उनके साथ शेखर कपूर और साथ में शिल्पा शेट्टी, इन सभी के साथ में आपको सेलिब्रिटी सुपरहिट के गीतों का स्वागत चखा रही हूं। क्योंकि स्वागत करना तो स्वैग करना तो आपका ही काम है, वैसे हमारे गीत और आपका साथ जरूरी है सेलुलॉइड सुपरहिट में। बोर नहीं होएगा क्योंकि आज रिंकू आपके साथ है। आइए सुनते हैं अभिजीत की आवाज में फिल्म औजार से ये गीत।
1: We had about to hear a song that has been heard before. This is different, you know, because it is funk, funk, funk, defunk, defunk, defunk.

0: Elena.
1: Now that we have heard the song which is supposed to be different, how different you find out, okay? Funk, funk, funk, defunk.
2: जी हाँ दोस्तों, रिंकू के साथ रहेंगे तो दिल धड़कना तो वाजिब है, क्योंकि अभिजीत की आवाज चल रही है, सेलुलॉइड सुपरहिट का शो चल रहा है, 107 एफएम रेनबो सुन रहे हैं छाया लोक में, और स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं इस वक्त 7:44। तो गानों की लड़ियां सामने है, समय बहुत कम है, सुनते हैं एक और गीत मस्ती भरी।

मोहब्बत का सिला मिला तो ऐसा मिला कि वफा के बदले सिर्फ बेवफाई का जहर मिला। अब इस टूटे दिल से क्या गिला करे कि जब किस्मत में ही सिर्फ अच्छा सिला लिखा मिला। या दोस्तों, आप इस सफर में प्यार में जहां खुशियां है वहां कभी कभी एक ऐसा मोड़ भी आता है जहां सिर्फ दर्द और अधूरापन रह जाता है। और सुखविंदर सिंह और साथ में शेखर रवजानी की आवाज में वो दर्द भरा गीत यशराज बैनर के तले फिल्म बचना हसीनों से आप सुन रहे थे। वैसे जो चाहे दर्द की आजमाहट आपके पास है वो हमारे पास भी है, क्योंकि हम आपको सुनाए जा रहे हैं। 7:50 हो चुका है, आप सुन रहे हैं सैलरीड सुपर हिट्स। सुनिए अभी केके की आवाज में।

गया, तुम्हारी एक मुस्कान से ये दिल दीवाना बन गया। लोग ढूंढते रहे दुनिया में मोहब्बत की ये परिभाषा, और हमारे केके ने दिल में घराना कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे केके की आवाज में ये गीत। वैसे तो तुम मिले फिल्म से थी, लेकिन साथ ही में दे रहे थे उनकी आवाज की वो जादू है कि लोगों के दिल में बिल्कुल उतर जाती है। वैसे मैं याद दिला दूं कि 7:56 हो चुके हैं और ये पहला भाग चल रहा है। आप आरजे रिंकू के साथ सुन रहे हैं ये गीत, गीतों का सफर, सेल्यूलर सुपर हिट्स। लेकिन भाग दो में आप पूनम जी यानी कि आरजे पूनम जी को सुनेंगे। आप भाग दो में उनके साथ बिताएंगे वो लम्हे जो मेरे साथ बिता रहे हैं अभी। तो चलो मैं आपके लिए बजाई जाती हूँ मीत ब्रदर्स अनजान और कनिका कपूर की आवाज में फिल्म रॉय से ये गीत। इसी के साथ आप मजा लेते रहिए गीतों का, क्योंकि आप बने हुए हैं FM रेनबो के साथ।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

8:11 यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। जी हाँ, गीत संगीत का ये जो सफर है साथ चलने से जरूर कट जाएगा। वैसे गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम और श्रवण। आवाजें अलका याग्निक और कुमार शानू और फिल्म का नाम हम है राही प्यार के। और ये नदीम श्रवण नाम का जो जोड़ा है ना, 1990 से 2000 के दशक की शुरुआत तक भारतीय संगीत उद्योग पर इसने जो प्रभाव डाला है ना, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। उनके संगीत की लोकप्रियता केवल धुनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये उस दौर की मेलोडी का दूसरा नाम बन गई थी। अब चलिए, नदीम श्रवण के बारे में इतनी बातें हो ही गई हैं तो उन्हीं के कंपोजिशन से एक खूबसूरत सा नगमा आप सब तक पहुंचा देती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए।

ये दिल दीवाना, ये गीत आपने सुना फिल्म परदेश से। नदीम श्रवण का संगीत इस बात का प्रमाण था कि एक गाना तब अमर होता है जब उसकी धुन बहुत सरल और कर्णप्रिय हो, और साथ ही साथ उन्होंने शोर शराबे या बहुत अधिक, आप कह सकते हैं कि अधिक तकनीकी इंस्ट्रूमेंट के बजाय मेलोडी पर ध्यान दिया। उनके गाने सुनने में बहुत सहज लगते थे, लेकिन उनका संगीत संयोजन यानी कि अरेंजमेंट बहुत गहरा और समृद्ध होता था। इसी कारण से शायद, या कारण तो और भी बहुत सारे थे, जिसके कारण लोग इनके गानों को आज भी सुनना बहुत बहुत बहुत पसंद करते हैं। और सही भी है, इनके गाने हैं ही इतने खूबसूरत, और जब इतनी खूबसूरती की बात हो गई कि तो एक खूबसूरत सा, बेहद खूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए नदीम श्रवण का ही संगीत है।

8:26 और आशिकी फिल्म से एक सनम चाहिए कुमार शानू की खूबसूरत आवाज़ में और संगीत तो आप सब जानते ही हैं नदीम श्रवण का। नदीम श्रवण की सबसे बड़ी ताकत कुमार शानू थे। शानू की आवाज़ नदीम श्रवण की धुनों के लिए जैसे बनी थी। उन्होंने न केवल कुमार शानू बल्कि अलका याग्निक और उदित नारायण के साथ मिलकर एक ऐसी साउंड तैयार की जो 90 के दशक की पहचान बन गई। उनकी धुनों में गायकों की आवाज को उभरने का पूरा पूरा मौका मिलता था। अब जब इतनी बातें इस बारे में हो ही गई हैं तो अलका याग्निक और कुमार शानू की खूबसूरत आवाज में खूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए सुनते रहिए, साथ रहिए और अगले 9 बजे तक हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

कुमार शानू और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज़ में फिल्म दीवाना से आपने ये गीत सुना, और इसके गीतकार समीर। अब नदीम श्रवण ने हमेशा समीर जैसे गीतकारों के साथ ही जोड़ी बनाई। ऐसे इस तरह की धुनें तैयार करते थे ना, जो गीत के बोलों के भाव को पूरी तरह से उनके साथ आप कह सकते हैं कि न्याय करती थी। उनके गानों में दर्द भी था, प्यार भी था, जुदाई भी थी और आकांक्षा जैसे भावनाओं का बहुत ही सरल और इस तरह का वो एक चित्रण होता था ना, जो आम इंसान के दिल तक सीधे पहुंचता था। फिलहाल 8:43 और यह खूबसूरत नगमा जो लिखा हुआ है समीर का ही, आप सब तक पहुंचाई देती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए।

कुमार शानू और अनुराधा पोटवाल की खूबसूरत आवाज में फिल्म दिल है के मानता नहीं से खूबसूरत सा नगमा आपने सुना। और ये सारे ही नगमे कुछ इस तरह के हैं कि इनके बाद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश बचती ही नहीं, फिर भी कुछ तो मुझे कहना ही है। 90 के दशक में कोई भी इंसान गाना सुनकर तुरंत पहचान लेता था कि ये नदीम श्रवण का ही म्यूजिक है। उनका एक सिग्नेचर स्टाइल था जो धीमा शुरू होता था, धीरे धीरे गति पकड़ता था और अंत में एक बहुत ही भावुक क्लाइमेक्स पर पहुंचता था। चाहे वो राजा हिंदुस्तानी का परदेसी परदेसी हो या धड़कन का तुम दिल की धड़कन में, उनके गाने एक कहानी कहते थे और उस कहानी को मुझे आप सब तक पहुंचाना है। सुनते रहिए, साथ रहिए।

8:58 और अब पूनम के जाने का समय है एकदम करीब। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई, टाटा बाय।